पारलाल भुवन प्रसाद काफले वितक अधिकारी यादव प्रसाद सापकोटा समुद्र प्रसाद ढकाल सताजी मेहर तिलक राम ढकाल उपरको आरोप दावी

0: 上台，虽然呢这个还有一个就是把这个就上台弄一个流程，
1: 嗯，
0: 这些呢就我呢就没有说就正常，我现在不是在那里把这个钱都拿了，所以我们就做好了原来一四五五了，我上台了，
2: 哎呦，那你这说起来啊，那你看我你比别人大了，啊不，啊那你看我比别人，啊我上台，我上台了，我来，我马里也都没上去，也从来没，我比上来更没上去啥。
0: 啊不，还没毕业过，在的时候就在这个这里操，你可以去那边上。啊，我那时候不管做啥样子，我上去待了，不对，出来还是做不好的。这样一个家里过来的婚姻，都来现在下车了。我们的我们的。家里上了，另外我也是，另外上了这个苦力的，那我也想吃。啊，我家里我身上的都没有，我自然没事的。另外上了两年苦力了，啊，我也想说，因为前面的又干一个活出来的，工作我是也进来不少了，另外我就是两个多的苦力，但我工作也累了，我没有苦力这样意思，啊，你稍微这样说吧意思。啊，有的家里吧，那么你啊，第二次嘛，我就是也吃，也就是有点。
2: 但是
0: 穿了长了，你说的是？哎，你这穿了长，对不对？穿了长了，肯定穿了长了。不要着急，不等了，穿了不要不等了，那你们来说，你们
2: 来
0: 穿。
2: 我运动完下来，不是你说健康了，我是挺穿。
0: 完全没对不了的，咱们的我这个说穿了对，再看看那个第二件事，如果咱们不接到你来了，我是接到。说完这个。就保证说我的身体不是得了什么肺的病的，俺家出过的，但保证我那个子弟那个农村的，啊，就过来的就出入病的，那你们那保证我的身体是得过来干的，但医生的不是得了家出了这个，得了他的家里的，就没说开，你还得我，那说明我的农村里头还是没有那个人种，他关于我的关于家里的关于你的一些关于他不写的那些东西，我说。 Thank you. आफ्नो नियमहरू हेरेर कति रुपियाँ गर्ने चाहिँ मेरो नियमक हुन्छ या पनि मेरो दिनचर्या गर्छ भने त्यो बिमारी चाहिँ थापेर उहाँको अगाडि भएर हामीले त्यो आगोको डेको तल बसेर त थापेरले आगोको त्यो सेन्टरमा बनाउँदा के गर्नु पऱ्यो शिक्षा नै हुन पऱ्यो अनि त्यो शिक्षा पाइसकेपछि मान्छेले त्यो बुझ्छ त्यसलाई त्यो ढङ्गबाट भन्दाखेरि औद्योगिकरणले एउटा उद्योगको ढङ्गबाट अथवा आत्मनिर्भरको एउटा बाटोको ढङ्गबाट केही आराम ल्याइदिनुहुन्छ अनि त्यो खालको राम्रो व्यवस्थापन हुन्छ त्यसको लागि के छ फेरि शिक्षा नै चाहिन्छ त्यो भएर जीवन शिक्षाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शिक्षा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसको फेरि हाम्रो वर्तन चाहिन्छ
2: तर पनि अब जो पहिलेदेखि पछाडि परेका अथवा पारेका पढाउने हाम्रो समुदाय छ यसमा त फेरि शिक्षा चाहिनलाई त फेरि आर्थिकै सुरुमा पहिलो आवश्यकता के लाग्छ यसको लागि
0: यसको लागि त

0: कृषि उत्पाद प्रमुख निकाय सीखना हो तो उसका फॉर्मूला वितरण करना किसानों को उनका कार्य था। सहकारी संचालक समिति का सचिव राम किशोर धार का आपूर्ति का महिला कार्य समस्या
1: त्यसपछि

लेकिन आज मैं एक दूसरे जगह सोच रही हूँ। मन की सुनता जी के घर में बड़ा मजा रहा।

0: सुरक्षित परिवार।
1: रेडियो कुरुक्षेत्र को सहकारी में स्वास्थ्य कार्यक्रम और देश से जनहित में जारी संदेश।

0: ser crema, o seria hospital vas fer-hi massa perquè tornem una en un cap de salut.
1: L'hospital és per tant d'amnistia o agarru?
0: Si aquí s'ha contat, doctor, com pot ser ni grànima, ultràsima o prota?
1: Per què tinc grana, arbo, si tu aquí saps, no et sobes és demà. I si s'ha dit que si s'ha dit, doctor, d'ara, ets, sàpid, col·lisó, no serà molt objecte als coins, ja.
0: Per què dic, no s'ha educat ningú, saps a dir? No, tant, tant, ràpid, no, i si s'ha dit, doctor, d'ara, qui ets als coins, no?
1: Que ara l'haixis mai un banquiller, no saps si aquí era hard, però no s'ha dit, मेरा मेरो कहा कि किसी उत्तराखंड के थाली को पेंशन थाली को किसी भाटा उपचार करें था
0: नशा चेकले का ग्रामीण हर को बिना ऑपरेशन फिजियोथेरेपी के था एक उपचार थेरेपी भाटा सफर उपचार करें था
1: ग्रामीण हर को सुविधा को लागी 24 घंटा एम्बुलेंस को व्यवस्था कर लिए उसका असहाय नागरिक एक महिला अनाथ बाल बालिका अपंग ज्येष्ठ नागरिक हर लाई औषधि बाहेक अन्य संपूर्ण सेवा में 10% छूट को व्यवस्था कर लिए उसका कौशल्य अस्पताल प्रणाली
0: Thank you.

0: हमारे एक सौ ये अपन के पानी को रखा होता है। अब धान में पानी तो चल रही हो तो काम फिर पानी तो खास बढ़िया नहीं तो पानी तो बढ़िया नहीं बढ़िया नहीं हो सब चीज चला कर सकते हैं पानी समय पर चल रहा सही नहीं तो चलता है कि बिया तुम लोग तो थोड़ा कर सकते हैं वो सब हमारा समान बढ़िया है
1: ये पानी चलने से क्या मालूम है
0: और फिर बात करें दोस्तों कि यह धान का पानी चलना पानी तो हो Thank you.

वर्ग रत्न में कार्यक्रम एच ई टी ओ का सहयोग में संचालित वाइजर कार्यक्रम अंतर्गत यूके में ऑफिस को बीबीसी मीडिया एक्शन का सहकार्य स्वतंत्र रूप में

0: नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे की प्रतिबद्धता का थी। व्यवहारिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में वृद्धि आई ने यहाँ अंकन को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक प्रबद्धता ऐसी कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना हार्दिक का अनुरोध करती
1: अस्पताल ऐसी सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार कराते
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर ऐसी प्यार छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच फिजिया
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यून सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा तरलाई शिशु को मुख बांधना नशा धारकोलक हाथ द्वारा निचलना ग्रामीण मुकदमा फिजियोथेरापी तथा एक थेरापी विधि बसेर उपचार कैदिता
0: नशा धारकोलक ग्रामीण के बिना अपेक्षा फिजियोथेरापी तथा एक उपचार थेरापी से सफल उपचार कर जाए
1: 24 घंटा एम्बुलेंस को व्यवस्था करेगा असहाय नागरिक एक पर महिला अनाथ बाल बालिका अपंग ज्येष्ठ नागरिक सेवा में

ने आज कहे तो मैं तो और मैं गुरु मैं पूजा कर को मैं बीच बीच कमाई तो और गेरू मैं ये दिन तो तब मैं ये ये था आज तो ये कटे वो दिन मैं गुरु के पूजा कटे तो दिन मैं गुरु मैं गाय मचे तो ये मचे कि मैं गाय पड़ा तो वो से मैं हम की घंटे लगा पाँच तरह मैं प्रकार पर आते कि दाम दाम काम तो मैं अपन कंधाम में तब कई गुरु पूजा अपना आज मैं कई ना बाबू तो से मैं आत्मा इंसान को पहले कुछ तक मैंने तब तक तक गोल चुना कह गई वो कलों की तो खा गई ये मैं अग्रिम शुभकामना मैंने कह तो ज्यादा बात नहीं होते थे ना तब मैंने कि बात की लगे तो जो मैं कार्यक्रम के अंतिम आते गए तो पहले तक तक मैंने तो तक उतर कर दिया पटेल तुम्हारी ने तो तक उतारा तक उतर दिया तो पटेल ने कहे मुखड़े कार्यक्रम में एक तो बात उतर नहीं पाया बाबू न हो मेरी मच्छर कहने का पढ़ने का काम नहीं कर रहा था बाबू 2076 साल 2076

time, संपत्ति से खाली हो शिक्षा, शिक्षा की कमी ने कम करी, ये मैं तीन जन्मदिन के जो भी शुभकामना देता हूँ, उन्होंने से पढ़ी लिखी आगे बढ़ी, जब भी मैं कई खाते रुपया कर ये मैं तीन शुभकामना दे दूंगा मेरी नगा को जो रुपये बाबू जो भी सुन तुम्हें चलते आपको समझ है अब जो फिलिंग मेरी नगा को जन्मदिन के शुभकामना आदान प्रदान बाबू जन्मदिन के शुभकामना आदान प्रदान की लक्षण छोटे में काय कर्म किया उनके मुराफे कर दो मेरे तब तक मेरे तक का उदय जो तब पटे तब आज उनके तक का उदय ताकू के जो पटे से पहले जो भी मेरे बाबू के पटे थे मैं भी नाम उठे थे मुझे कहते हो पहले लोग मुझे बातें हमारे उन्हें खारू ऐसा लगा बारह बार दिन नगर पालिका वाटर में छाप मानतो जो भी हो तोर के चुप रहे थे कहने से कार्यक्रम संचालक सुप्रीम सर मेरे तक तो पहले चुप का होते का कुछ नहीं हो ऊपर से बोलता था तो पहले का कुछ नहीं हो कि मैंने पकड़ना का चाहिए ना हो वो पूछी बार हक्के ना हो ये करें काम ये तब जो बात बात जाते हैं अतीत के चेक कर लिया तो उसमें गुर गुर बार उन्होंने हो वहाँ से ना हो सारा संसार पूरा की करें काम हो ये तब जो बात बात जाते हैं दर्दनाक का पैसा होता है कि वो ये चीजें जो वो सालों का कुछ जो पता है जो कोई नहीं होना जब जो धन लगा देखो अस्ति के में तब उतरता तो फूल के क्या उतरती है ना तब तक आराम की सोचा है जैसे वो काश में तब

जय दादा संध्या सेवा छेख मान संदेश में अपना और स्वागत का संध्या बिंदु संग्राम कुमार संदेश पर दिया का साथी एफएम राजापुर रेडियो खाते मारो चांदी गांव पालिका माध्यम से प्रसारण प्रसारण की बात हमारे संदेश का बुलेटिन है मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक में से अज्ञात चयन देव सना खत करना इलाका प्रभारी मोतीपुर बांसवरी जी लेकिन मन अब आपने पर दिया तो किसान समस्या न बुलरिया नगर पालिका में 28 बार पीड़ित परिवार आवास हस्तांतरण और संचार से

आवश्यक स्रोत साधन व्यवस्थापन
आत्मा चुस्त बनाए साझा योजना अनुसार आज बड़ा छोड़ा मंत्रालय मन सुनकर समय में हुई सीखना संभावित विपद का जोखिम न्यूनीकरण पर स्थानीय तह सुरक्षा निकाय को व्यापारिक क्षेत्र का समूह बीच नियमित मंत्रालय पूर्व तैयारी को कार्य प्रणाली बर्गर बने के कचहरी में जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय भरपुर का प्रमुख राम प्रसाद अवस्थी पीपुल प्रवेश गौतम लगाये इंडियन पीपुल इंडियन प्रवेश गौतम सहजीकरण करते कचहरी का संचालन विपद फोकल पर्सन बहादुर मल्ल खबर कांसे ओम प्रकाश गुप्ता खबर पठेलवाचर बर्दिया जिला का प्राकृतिक तलवा तथा पर्यटकीय गंतव्य का रूप में परिचित बर्दिया तलवा अब आसपास का किसान द्वारा सिंचाई का मुख्य स्रोत बनता बर्दिया तलवा पानी परिकल का छठो गांव का किसान का खेती पाती सिंचाई का तैयार 2036 साल में प्रभाव सुखा पड़ता उबेरा थे बर्दिया ताल का पानी ले यहाँ का किसान का खेती जो भी रहता अब फिर यह तलवा का पानी ठहर गांव का किसान का सिंचाई करते बैठा बढ़िया तार गांव पालिका कांग्रेस थारू संरक्षण सफाई कर पड़ा महंगा

सभी सूत्र पश्चिम पूर्वी सभा का विशेष अधिकार समिति का संस्थापक तथा सदस्यों का उनका प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन सात बजे मिली घोषणा पत्र 1983 जारी कर दिन चलता। विशेष अधिकार समिति का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रपति का नौकरीमा लुम्बिनी प्रदेश सभा का विशेष अधिकार समिति का आयोजनामा असार 2 और 3 गति हुईराको सम्मेलन संसदीय विशेष अधिकार संरक्षण प्रदेश सभा का स्वैधता तथा लोकतांत्रिक शस्त्र का सुदृढीकरण होना प्राथमिकतामा रहेको सात बजे घोषणा पत्र जारी गर्नको घोषणा पत्रमा प्रदेश सभाका स्वैधता हो मर्यादा हुन सुदृढ गर संसदीय विशेष अधिकार सम्बन्धी सर्वभौम सिद्धान्त हुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार आत्मसात गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदा संघ संघीय लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न सबको पक्ष जिम्मेवार बन पर्न उल्लेख गरिदा सम्मेलन कार्यपालिका हो व्यवस्थापित आर्थिक सुमधुर सम्बन्ध लोकतन्त्र सुदृढीकरणका आधार रहेछ व्यवस्थापिका निर्देशन हो निगरानी प्रति कार्यपालिका पर्याप्त गम्भीर निर्वृत्त विशेष अधिकार सम्भावित गम्भीर ध्यान आकर्षण प्रदर्शन उसैका नेपालका सर्वप्रथम सत्ता अखण्डता औ राष्ट्रियता प्रति संवेदनशील रहे यहाँका संरक्षण राष्ट्रको पक्ष गम्भीर बन पर्न अर्जित हिँड्दा विशेष अधिकार समिति रूपान्तर बीच समन्वय सहकार्य हो अनुभव आदान प्रदान हुन संस्थागत गर्न प्रतिबद्धताले घोषणा पत्रमा समेत गरिदा नेपालका संविधानका धारा 187 उपधारा 9 बमोजिम प्रदेश सभाका विशेष अधिकार सम्बन्धी कानून निर्माण आवश्यक निष्कर्ष निकाल्ती कानून तर्जुमा प्रक्रिया आज पहिला निर्णय गरिएमा संघ विशेष अधिकार समिति हुकन बीच समन्वय सहकार्यमा संस्थागत गर समन्वय समिति गठन गरिदा ऐना राष्ट्रिय सम्मेलन सुदूर पश्चिम प्रदेश सभाका विशेष अधिकार समितिका आयोजनामा गर्न निर्णय गर्दा सम्मेलनका उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेख नारायण आचार्य गर्दा महासंघ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर प्रदेश सभाका भूमिका महत्वपूर्ण उल्लेख गर्दै कार्यपालिका हो व्यवस्थापिकाको समन्वय उत्तरदायित्व र पारदर्शिता आदि प्रभावकारी बनाए पर्नमा जोड दिनबाट घोषणा पत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सभा विशेष अधिकार समितिका सभापति गिरी एउटा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभापति तुलसी देवकोटा हो बागमती प्रदेश सभाका सभापति मायावती शर्मा हस्ताक्षर गर्न ओम प्रकाश हो।

0: spend its time shopping it up. How she needs to be able to ship a set of winners, that's a cover for the
1: point. Shall we talk to you? I said, you know, there's something to come into the park of the park of the park.
2: जाने खुआ में लपुर लागे करते ही जनता को पैसा खर्च करने को खुदा ही ना बनने बनने का बाता जाने खाए ना सरकार ने जो अपना खाए बने को
1: इतना भारत सुनावा बयानिस में स्तंभ निर्मा इस विनोद को लगना संपन्न हो भारत में बिठाने की अधिकार सुना करें को मुक्ता करें चीन भला लड़ू बनकर भई दिवस आए लड़ू आपको सिर्फ मैं एक दिन शुरू करते हैं और इसमें आगे लेते हैं

हरेक बिहिबार बेलुका 7:30 बजे या भोलिपल्ट बिहान 6:30 बजे अनि पुनः प्रसारण सबै दिन राति 8 बजे।

सदाई का स्वस्थ प्रसन्नता हो गर्भ अवस्था को स्तर पालना तथा खाना का संग नियमित रूप में आयरन कैल्शियम खाने सुधाई स्वस्थ सदाई सुरक्षित परिवार।

संसारकी के की सुंदर कृष्ण को हमारे पति मानते थे तीन सालों बाद जो चंचल उसी देखी थी उन्होंने पैदल ही बताई स्वागत गर्न आएका थिए।